0: है छोड, आज दाइले चलाउँछ।
1: ल जाँदैन सानी,
0: के भयो त छिप्नी हो बस।
2: चिक्नु चिक्नु चिक्नु फर्के फर्के।